वनम सजति सर्वं संध्या दीपं सर्व सत्यम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम्।

सतगुरु स्वामी माधवानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब ऋषि मुनि महात्माओं की, माता पिता गुरुदेव

0: दीप नारायण भगवान अलकपुरी समादेव देवपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन भारत माता की जय।
1: विश्वगुरु स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।

0: हथेलियों को अच्छे से मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डीजी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासु अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती हैं, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, है ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं, कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वं मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है, कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव महादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मत वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ओईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदिनम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो वो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो तुम्हारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Daily Life Foundation Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Daily Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Daily Life
1: Yoga in Daily Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries,

ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ओम बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय।

अमृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवादनं उर्वारुकाम्य बन्दनात् मृत्योर्मुक्षीर्मा अमृतात् ओम त्र्यंबकं।

0: सर्वेश्वर महादेव की।
1: ओम गुरु मान सर्वेश्वर गुरुदेव की। मंडेश्वर सुनकार पुजी महाराज की।
0: देवेश्वर महादेव की।
2: Thank you. Lalita Purusha Mahadeva Ki Sadatar Purusha Mahadeva Ki Gurudeva

पुरुष महादेव की जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद गुरुजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंद गुरुजी गुरुदेव की जय। आज का आनंद की जय। सब संत श्रमण महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सत्सनातन धर्म की जय। मामल स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय। मामल स्वामी फुलपुर जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की

0: की जय।
1: देवेश्वर महादेव की
0: जय।
1: मैत्रानंद भगवान की
0: जय।
1: सभी भक्तों से अनुरोध है कि प्रसाद अब सब ग्रहण करें। आरती हो गई है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग प्रसाद करावें। बोलिए दीप नारायण भगवान की
0: जय। की जय।

अभी हमला कर, और हमारे संगीत के गुरुजी भी रहे हुए अशोक जी चौहान को निवेदन करूंगा हमारे अपने पूरी टीम के साथ और करें। दिस इज अजीत चौहान, ही इज ऑल्सो म्यूजिक टीचर व्हेन आई वाज यंगर एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल म्यूजिशियन, सो आई वुड रिक्वेस्ट हिम एंड हिज टीम टू बिगिन द नाइट विद सम ऑफ हिज भजन्स। वी हैव थ्री और फोर डिफरेंट सिंगर्स कमिंग अप फॉर द होल नाइट, सो यू विल नॉट बी बोर्ड।

जय हो, जय हो, जय हो। देवेश्वर महादेव के इस पवित्र प्रांगण दरबार में और विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगीराज परम विभूषित परम पूज्य स्वामी महेश्वर नंदपुरी जी महाराज के इस पावन निष्ठा में अनंत साधु चित्त सत्संगी इस पंडाल में विराजित हैं और हम सत्संग की अमर गंगा में बाबूजी महाराज और भारत के सब संत वृंद मुनिजनों के पावन सानिध्य में सत्संग का आनंद ले रहे हैं। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि दोनों हाथ उठाकर जयकारे लगाएं और बड़े प्रेम से और पूरी ऊर्जा के साथ में जयकारे लगाएं। जितने भी भक्त विराजे हैं, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, बड़े प्रेम से अपनी आवाज उठाकर, दोनों हाथ उठाकर बलि श्री दीप नारायण भगवान की जय हो, जय हो। श्री अलख पुरुष महादेव की जय हो, श्री देवेश्वर महादेव की जय हो। हिंदू धर्म सम्राट स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव भगवान की, परमहंस योगीराज विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद

बहुत भाव से बाबूजी महाराज के सभी भक्त और संतों ने इस सत्संग को अपने मधुर और संतों की वाणियों से आगे बढ़ाया। आज के इस विषय को देखकर और आप सभी के हृदय में अनंत आनंद को देखकर मुझे एक नारायण दास जी महाराज की वाणी याद आ रही है, गुरु बधावे के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जहां कहीं भी आपको लगे कि हाँ मुझे भी गाना चाहिए, मुझे भी आनंद लेना चाहिए, वह अपने स्वतंत्र मन से बड़े प्रेम से आनंद लीजिएगा। लीजिए बाबूजी महाराज आज्ञा लेख आश्रम गोस्वामी संगीत संघ का एक विद्यार्थी हूँ और बड़ा भाग्य है जी महाराज और आप सभी के चरणों में यथा योग्य सेवा का अवसर प्राप्त होता है। आप सभी मुझ पर आशीर्वाद कर लीजिए।

0: गुरुदेव महाराज के जब, और वो भी ये आषाढ़ी पूर्णिमा, प्रणाम साहब, आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव भगवान के दर्शन और ये संतों का पावन सानिध्य और ये आनंद की जो लहर हम सभी के हृदय कमल में उमड़ रही है, उसी को देखकर अपने दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से,
1: ओ वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं,
0: आज से सुंदर अवसर मिलेगा नहीं आपको, आज जो अपने गुरुदेव के समक्ष बैठकर जो उनको न्योछावर होने वाले हैं, जो उनपे वारी जाने वाले हैं, अपने दोनों हाथ उठा लीजिए बड़े प्रेम से, गुरुदेव के लिए, अपने आप के लिए दोनों हाथ उठाइए।

काही भक्तास आप अग्नि तैयारी अकल करवडी आपण दोन हात उठा आणि बेंडी किनो याद वडतो तो अटामत सुनको है आज। हां गुरुदेव रे जितना नजदीक रहा उतो आज आनंद है। आइए बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठाइए।

जितने भी भक्त आज के वक्त विराजे हैं, गुरुदेव पावन समय आप और हम सभी भक्त मिलके गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ये भजन सुनाकर आज की भक्ति जगा रहे हैं। एक बार सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, बड़े भाव और प्रेम के साथ में जोरदार जी घोष लगाओ, एक बार दोनों हाथ उठा के

0: राधे भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री श्रीदेवपुरी जी महादेवा की जय। श्री श्री स्वामी माधवानंद जी सतगुरु देवा की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
1: You do it, Puspa. One version. If I like it more, then I will have one more.
2: Satguru Dev ki jai.

0: जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री होली गुरु जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु जी परमहंस स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की जय।
2: वन मोर भजन, डजंट मैटर विच वन।

जय देवादि देव श्री देव पुरुष महादेव की जय हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय

लक्ष्मी बीरबाई की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज की आनंद की जय, कृष्ण कन्हैयालाल की जय।

0: आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी
1: की जय।
0: देवदि देवम श्रीदेवपुरी जी महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

शिष्याल जी राम जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज की आनंद की जय। सत गुरुदेव की जय।

बोले श्री प्रणाम भगवान की जय। सदेव पुरी समदेव की जय। श्री हिंदू धाम समर मन वनम जिसर गुरुदेव की जय। विश्व गुरु मामनलेश्वर परमांश स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

की जय। देवाधिदेव श्री देवापुरी जी महादेवा की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।